0: जवानी रूप नखरा हाय हाय हाय हाय रूप जवानी रूप नखरा किती मी गाना गाव
1: पर गाना गाता लग कराया जवळ कशालाया
0: जरा थांब
1: नग नग नग नग नग काटा काटा सरसर काटा सरसर

कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। हे घोषवाक्य लिहिला है संगीता अकुलकर यांनी। ऐकत रहा रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।

0: अरे होश न खुद कहीं जोश में देखने वाला।
1: नमस्कार, मी प्राचार्य प्रकाश कराळे बोलतोय। तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।